0: by Desider. Enjoy with us.
1: Girlfriend Gitanjali.
2: छो जीवु प्राण खा, जीवु सांस, अले जीवु जीवन खा, छो जीवु फुक खा। जी छंत यक्को मतीना, जी छंत यक्को यक्को मतीना।

0: துப்பாக்கியில் வந்து அழுது பாருமாவை குளித்தேன்னு செஞ்சாங்க.
1: के हो यार दिमाग छैन के गरे के यस्तो अलिकति हेरेर गर्नु पर्दैन काम नलाग्ने केटी को छ यहाँ
2: हजुर हजुर हजुर सर
1: के भयो वैया
2: सरी सर माफ गर्नु होला हिजो मात्रै गाउँबाट आएको एकदमै नयाँ छ भर्खर काम सिक्दैछ म तपाईँलाई अर्को टेबल मिलाइदिन्छु नि सर
0: जाउँ त बसौँ
2: सरी

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसीशहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिति 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौ। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाती नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाई नाती अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजू अदिति पलातिनीहरू आर्य आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजू भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसीशहर नगरपालिका साथ भलुवाटार लमजुङ।